माया कर दी नष्ट ज्ञान नीवे मान किए बुद्धवान जिसरों उतारो बुझानू जीवन सफल बनावन खातर गाइए तेरे चोजानू जीवन सफल बना

0: हिंदू सिख बलहारे जावन कर दे तेरिया गोजानू जीवन सफल बनावन खातर गाइए तेरिया चो जानू जीवन सफल बनावन खातर
1: रक्त बीज पसारा करके मिट्टी वेच पंजे तत भर के जोड़े करे मदीन ते नर के पाया।

सिमर निस दिन जो ब्रह्मादक लोचे दर्शन जो सन कादक जोगी जति उदासी आद कलब दे तेरिया गोजानू जीवन सफल बनावन खातर गाइए तेरिया चोजानू जीवन सफल बना

जोड़ता डाडे ने हो सकती किवें अजोड़ी है। भाई सैना मल तेरा नी दी बड़ी सुंदर फवदी जोड़ी है। भाई सचन सा

0: परम सन्मान योग सतगुरु जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु सवारी खालसा साध संगत जी बेनती है आप जी के चरणों विच कि थोड़ा समा इस तरह जुड़े रहने की कृपालता करनी। सतगुरु जी का अदब सत्कार मुख रखदिआं सतगुरु जी के पावन स्वरूप नूं सुख आसन अस्थाना ते विदागी तों बाद इत्थों चाले पाउण की खेचला करनी जी आप समूह संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जो सतगुरु जी की पावन पवित्र गोद अंदर जुड़ करके सतगुरां की पावन गुरबाणी कथा कीर्तन गुर इतिहास श्रवण करके मनुखा जन्म दे प्राप्त समय और सवासां दा आनंद माण रहे हो बहुत बहुत धन्नवाद। साडे सत्कार योग भाई योगा सिंह भागोवालिया अते उन्हां दे समूह कविशरी जथे दा जो आप जी नूं पावन गुर इतिहास कविशरी वारां द्वारा आप संगतां दे नाल सांझ पा रहे सन। सतगुरु जी कृपा बख्शिश करन समूह जथे नूं चढ़दी कला तंदरुस्तियां दी दात बख्शिश करन इसे तरह देशां विदेशां विच गुरबाणी गुर इतिहास दा प्रचार चढ़दी कला दे नाल करन दे बल उदम बख्शिश करन कोटान कोट धन्नवाद शुकराना दीन दुनिया के मालिक सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जिन्ह ने महान कृपा बख्शिश की है अमृत वेले तो पावन तख्तों से प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दीदार दरगाही उपदेश बख्शिश करके निहाल कर रहे हैं। सानू अपने पावन चरणों में जुड़न का यह सुभागा समा बख्शिश किया है सतगुरु जी कृपा बख्शिश कर इस तरह आने वाला समा पावन चरणों नाल प्रेम प्यार बनाई रखन दरों घरों गुरसिखी जीवन चढ़दी कला नाम बाणी दीआं दातां बख्शिश करन। सो बेनती है आप संगतां दे चरणां विच कि जिस तरह आप जाणदे हो कि जो तकरीबन दो दिन पहलां पंजाब दे विच घटना वापरी साडा बहुत ही सत्कारयोग कौम दा पंथ दा पंजाब दा दर्द रखण वाला कौम दी नौजवानी नूं नशियां दी दलदल दे विचों कढ़न वाला शहीद भाई परमिंदर सिंह जिन्हों झोटे के नाम नाल जालिया जाता मानसे की धरती तो कि नशे के डीलर वालों जिन्होंने ये तहैया किया होया कि पंजाब की नौजवानी नशिया के डोबना उन्हों की जवानी बर्बाद करनी उन्हों की गोली का शिकार होया पर हैरानी की गल ये कि गोली मारन वाला जोड़ा वह मलंग जहा वो कहते हैं कि पहलो चार पाँच परचे जड़े ने इसे इस कारण दर्ज हुए ने कि नशे वेचण दा करके ते हैरानी दी गल ए कि नशे वेचण वाले नूं उत्थे लाइसेंस असला ते जिहड़े कौम दी नौजवानी नूं बचाउण वास्ते दिन रात घरों तुरे होए ने उहनां दे लाइसेंस कैंसल ते उहनां दे असले भी जब्त ये कुछ उत्थे वापरिया ते असीं ये मत सोचिए कि वो एक मैडिकल स्टोर वाले ने कीता उस दे पिछे एक पूरी स्टेट जिहड़ी वह काम कर रही आ ते जो पिछले समय दे विच जिन्हें भी पंजाब दी नौजवानी नूं सुचेत करन वास्ते आवाज़ बुलंद कीती पंजाब दी किसानी वास्ते आवाज़ बुलंद कीती ते उहनां नूं किसे नूं एक्सीडेंट दे रूप दे विच जिहड़ा शहीद किया गया भाई दीप सिद्धू वर्गिया नूं भाई संदीप जो कबड्डी दा खिडारी सी नंगल अंबियां तों उन्हां नूं गोलियां मार दित्तियां गईयां जां होर कोई भी पंजाब दे हक्कां दी गल करदा ते जे भाई अमृतपाल सिंह ने विदेशां दे विचों जा के ते कौम दी नौजवानी नूं नशियां दे विचों कढ के ते धर्म दे गुरमत दे राह दे उत्ते तोरिया आनंदपुर साहब वल नूं उन्हां दे मुख कराए ते उन्हां दे उत्ते NSA ला के ते अज बेशक ओह 4 लाख वोटां लै के ते लोकां ने अपना नुमाइंदा चुणिया MP बणाया ते पर अज भी वह असाम डिब्रूगढ़ की जेल दे विच बैठा ये सानू प्यारे जनाउण वास्ते आ कि तुसी इस देश दे विच गुलाम हो भावें किसी नू 10 लाख वोट बना के पा के अपना नुमाइंदा बना लो तो भावें 2 लाख बना के पा लो ताडे नाल इहो कुछ ही होना जे तुसी इस धरती दे उत्ते रहना ते तुहानू साडी गुलामी दे अधीन जिहड़ी अपनी जिंदगी बसर करनी पैणी आ ते जदों तुसी अपनी धर्म दी सच दी आवाज़ बुलंद करोगे ते जां ते तुहानू डिब्रूगढ़ वर्गियां जेलां मिलणगियां ते जां तुहानू इत्थे गोलियां दा शिकार होना पऊगा। सो ये सोचना असी हाँ कि उस गुलामी दे जूले दे थल्ले असी निकलना किदां क्योंकि असी जिन्ने मर्जी पापड़ वेल लईए जिन्ने मर्जी असी अपने फर्जा तो भगौड़े होण वास्ते कर दईए पर पिछले लंबे समय तो झात मार के वेख लो किन्नियां उत्थे कमेटियां बणियां किन्ने कमिशन बने की कुछ होया ते किते अज तक इंसाफ मिलिया। दिल्ली दे विच किन्नियां साडियां धीआं भैणां दी बेपती कीती गई, किन्नियां दे घर बिजनेस जिहड़े बर्बाद कर दित्ते गए, किन्नियां दे गलां दे विच टायर पा के जिहड़ा उहनां नूं जिउंदा साड़ दित्ता गया। ते अज तक दसो दिल्ली दे सिख नसल कुशी दा एक भी दोषी होवे जिन्हों कोई फांसी की सज़ा सुनाई गई होवे। जदों जवानी वेले तो उन्होंने इन्होंने कुर्सियां दे के नवाजिया, सज्जन कुमार वर्गे टाइटलर वर्गे जदों जवानी के अखीरले पड़ा दे उत्ते आए, जदों कह देंदे ने कि ना वो घरदे रहे ना घाटदे रहे, ना वो इस सिस्टम के वास्ते जिन्ना उन्होंने वरतना सी वरत्या, तो जदों उधरों भी वह बिल्कुल नकारा हो गए। तो उदों उतों दी अदालतां ने सज़ा सुना दिती कि फलाने सज्जन कुमार नूं दिल्ली दे जिहड़े नसल कुशी सिखां दी होई उहदे विच दोषी मनदिआं सज़ा, तो पहलों उहनूं मुख्यमंत्री दीआं कुर्सियां एम पी दीआं कुर्सियां सेंटर दे विच मंत्री की कुछ नहीं कीता। तो जे असीं अजे भी कहीए कि उस देश दे विच रह के तो असीं अपनी जवानी बचा सकते हाँ, अपनी किसानी बचा सकते हाँ, जां असीं बहुत महफूज हाँ, ये साढ़े मन का बहुत वड्डा एक भरम भुलेखा होवेगा। सानू इस भुलेखे दे विचों निकलन दी लोड़ आ, ते सानू जिहड़ा अपना आजादी का राह आ उस राह दे पांधी बनन दी लोड़ आ। जिन्ना चिर तुसीं देश पंजाब नू दिल्ली दे गलबे दे थल्ले आजाद नहीं करा लैंदे, ना ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह।
1: 1550 KRPI रेडियो ते तुसी सुन रहे सी लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।

0: हमें कंडे नो फॉलो कह देंगे। मैं कई दफा हैरान होना, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस तरह के पुरुष निरपक्ष आते ने, पक्षपाती नहीं आते। भाई गुरुदास जी ने एक लंबी चौड़ी पौड़ी विच एक वार्ता लिखी, उसका भी सूक्ष्म जिहा रूप मैं थोड़े सामने रख दें। दुर्योधन श्री कृष्ण जी दे पास गए, कहन लगे भगवान जितने तुसी सखा अर्जन दे हो मेरे भी हो, जितना संबंध थोड़ा उन्हां नाल है मेरे नाल भी है, साड़ी मदद करो तुसी, मैं थोड़े कोल आया फरियाद लेके। इस कथा नू भाई गुरुदास जी ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। श्री कृष्ण ने कहा एक मैं हां एक मेरी फौज है, तू दोहां दे च एक नू चुन सकदा है, या मेरी फौज ले ले तेरे पक्ष दे च लड़ेगी, या तू मैनू ले ले मैं तेरे पक्ष च खड़ा हो जावांगा। राजनैतिक बंदा सी दुर्योधन, धार्मिक तो है नहीं सी, संसारी बार मुखी मनुख सी, बार मनुख जिसका सब कुछ बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदरों सोचता है मौका मिल गया, कल्ले कृष्ण नु मैं की करना, महाराज फिर फौज ही दे दो। कृष्ण ने कहा ठीक, मेरी फौज तेरे पक्ष दे च खड़ी होगी। अर्जुन आया है चरना ते मथा टेक है, श्री कृष्ण कहने ने तू देरी नाल आया। दुर्योधन ने मंग की थी सी ते मैं कह दिता सी या मेरी फौज ले ले या मैनू, फौज ते उसने मंग ली है, सिपाही ते उसने मन सेना ते उसने मंग ली है, हुण ते मैं ही हां कल्ला। अर्जुन हाथ जोड़ के कहिंदा है भगवान जे ए अवसर मैनू पहले मिलदा मंगण दा ते मैं उदों भी थानू ही मंगना सी, थोड़ी सेना नू नहीं मंगना सी, तुसी मेरे पक्ष दे च खड़े हो गए तो फिर हार भी थोड़ी जित भी थोड़ी, अपना ते कुछ भी नहीं निश्चिंत, असी ते बेफिक्र हो जावांगे। संसार दे इतिहास दिच इस तरह पहली दफा होया है कि कृष्ण जी दी सेना दुर्योधन दे पक्ष च खड़ी है, स्वयं कृष्ण पांडवां दे पक्ष अर्जुन दे पक्ष च खड़े हैं। इस तरह का फैसला कोई निरपक्ष मनुख कर सकता है, जो निरपक्ष है जिन्हों लग लपेट नहीं है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे च औरंगजेब के कुछ गुण भी लिखे ने, हैरानगी है मैनू, जेदे हुक्म दे नाल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज शहीद किए गए, जेदे राज पाठ दे दो साहबजादियां नू दीवारां चिणिया गया, दो लड़ाई दे शहीद होए, घर घाट तबाह होए, जिंदगी सारी संघर्ष दे बतीत होई। उस पुरश दियां कुछ खूबियां भी लिखते ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जफरनामा पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे। श्री मुखवाक पातशाही दसवीं जफरनामा, नामा कहने चिट्ठी नु जफर जीत नु, जीत दी चिट्ठी, जीत दिया चिट्ठिया, हैरानगी दी गल, जीत दी चिट्ठी, पिता शहीद हो गया, बच्चे शहीद हो गए, परिवार बिछड़ गया, घर घाट तबाह हो गए, फिर भी सतगुरु कहंदे ना औरंगजेब मेरी जीत हुई है, तेरी हार हुई है। जीत दियां चिट्ठियां लिखियां ने, ये पहुंचाइयां गईयां अहमदनगर। जिन्हों पढ़ के तड़पदा ही रहा औरंगजेब। मुख्तसर में अर्ज करें इस गल नूं, मैं बहुता लमकावाना, सतगुरु ने खूबियां लिखियां ने, गुण लिखे ने, औरंगजेब तू अलल सुभा उठदा है, अमृत वेले उठदा है, ये तेरी बहुत वड्डी खूबी है। सूरज निकलण तो पहले पहले अमृत वेला हुंदा है। साधना नवा नवा जो मनुख इस मार्ग ते चले, ए रुत ए समा बहुत वड्डा सहायक है, मददगार है। महाराज दी बाणी चौथे पैरे सुबह के, सुरतियां उपजे चाओ तिन तिन दरिया वासों, दोस्ती मनमुख सच्चा नाम, मन देच मुख देच उस समय सच्चा नाम है जो रात दा चौथा पैरे, चौथे पैरे अमृत वेला। तू अलल सुबह उठदा है अमृत वेले नूं, इस्लाम विच कहिंदे ने अल्लाह दी सुबह, सनातन मत विच कहिंदे ने ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म दा मुहूर्त है, ब्रह्म दा चिंतन करना है, वो कम वो समा ब्रह्म दी याद वास्ते, प्रभु दी याद वास्ते। गुरमत विच इस नूं अमृत वेला कहिंदे ने। हां जिदी सुरत पक गई है उत किसी वक्त भी जप सकता है, उदे लिए हर वक्त अमृत वेला है। पर जितने चिर तक जिंदगी अमृतमयी नहीं हुई, अमृत वेले की मदद लेनी पेगी, लेनी पेगी, उस तो बिना गल नहीं बनेगी। ऐ औरंगजेब तो अलल सुबह उठदा है। दूसरा, तू पंज वक्त दा पक्का नमाजी है। तू फजर दी नमाज भी पढ़दा, तू असर दी नमाज भी पढ़दा, तू जोहर दी नमाज भी पढ़दा, तू मगरब दी नमाज भी पढ़दा है, और तू रात दे वक्त इशा दी नमाज भी पढ़दा है। शाम दे वक्त तू पंजे नमाजा पढ़दा, तू दो वक्त कुरान दी तलावत भी करदा है, ये भी तेरी खूबी है। पाठ भी करदा है, तू सवेरे भी पाठ करदा है, शामे भी करदा। औरंगजेब तेरी एक होर भी खूबी है, तू हाथ दे तस्बी रखदा है, माला, और मणका फेरदा ही रहना है, अल्लाह हो अल्लाह हो, जे वेला बैठा हो ते करी जांदा है, ये भी तेरी खूबी है। जुम्मा रात नो वीरवार दी रात नो जुम्मा रात कहंदे ने, तू जकात भी देना है, ये भी एक तेरी बहुत वड्डी खूबी है। ते रमजान दे महीने च तू पूरे 30 रोजे भी रखदा है, कुछ नहीं खांदा, तू रोजे भी रखदा है। ये खूबियां बयान करके फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, इतने गुणां दे होंदे होया, इतनियां खूबियां दे होंदे होया औरंगजेब, फिर भी तू शैतान है, फरिश्ता नहीं है। फुल नू फुल कह दिता है, कंडे नू कंडा, हुण कंडे नू कंडा कहना, फुल नू फुल कहना, यह सच्चाई है। कंडे नू फुल कह देना खुशामद है, फुल नू कंडा कह देना निंदा है। गल घटा के बयान करनी निंदा है, गल वधा के बयान करनी खुशामद है। कंडे नू कंडा कह देना, फुल नू फुल कह देना, ये सच है। अक्सर मनुख अधूरा सच बोलता है जो झूठ नालों भी पैड़ा होंदा है। अधूरा ज्ञान नियम हकीम ये जान नू खतरा होंदा है। अधूरा सच की फुल नू ते फुल आख देता है, हुण कंडे नू कंडा कहना औखा है। जे कंडे नू कंडा आखे ते चुभेगा, साडे कपड़े फाड़ेगा, साडा ही दामन चीरेगा, चलो की लेना सी। एक कदे कदाई कोई अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते प्रगट आउंदे ने, जो ऐलानिया फुल नू फुल कह देंदे ने, कंडे नू कंडा कह देंदे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਤਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਮਨ ਨਦਾਨਮ ਕੇ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ਨਾਸ, ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਤੋ ਕਾ ਰਹਾ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਜਰਦਰਸਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੈਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਮਤ। ਚਾਰ ਹੀ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਰ ਹੀ ਧਰਮ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਜੋ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਠ ਹੀ ਨੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰੈਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਹ ਤੂਰ, ਕੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੂਰ, ਉਸ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8-10 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਮੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਾੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਹਾੜ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ 90% ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਦੀ ਲਮਕਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਹ ਤੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 100-150 ਭੇਡਾਂ ਸਨ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਰਨਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ, ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੇੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਬੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਇਜ਼ ਭਾਵ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲਾ ਮਕਾਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਠਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਵਦੇਸੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਉਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਠਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, बादशाह नूं नाम दिता जांदा है। फिर मनुख ने सारी चीजां नूं नाम दिते ने, उंज कोई चीज नाम लेके जमदी नहीं, नाम कोई परमात्मा दा भी नहीं है। कलगीधर पातशाह कहिंदे ने अनाम है अठाम है। जाप साहब एक ऐसी अगम्मी बाणी है, और मेरे ख्याल सिर्फ जाप साहब दा बोध हो जाए तो मनुख नूं पूरा ब्रह्म ज्ञान हो जाए, पूरी समझ पै जाए। ऐसी अगम्मी रचना है धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थी। अनाम है अठाम है, हे प्रभु तेरा निश्चित कोई ठिठा ठिकाना नहीं, तेरा कोई नाम नहीं। मनुख ने तेरे तेरे जे तेरे जेड़े गुण देखे ते जिना जिना गुणा तो प्रभावित होए, नाम देंदे गए नाम देंदे गए। कोई किसे गुण तो प्रभावित होया, किसे ने कोई पहलू देखिया, किसे ने कोई पहलू देखिया, फिर भाषा लोकां दी अलग अलग, तो भाषा नूं आधार बना के पहलुआं नूं आधार बना के हजारां नाम परमात्मा दे हो गए। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, सदके जाने आ जितने भी तेरे नाम है। गुरु नानक बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। मैं हैरान हा सूरज दे कई नाम ने, सूरज नु सूरज कहंदे ने, रवि कहंदे ने, भान कहंदे ने, फिर परशियन विच खुर्शीद कहंदे ने, आफताब कहंदे ने, सन कहंदे ने। इसे एक सूरज नु कोई झगड़ा नहीं करदा, आफताब आखो खुर्शीद क्यों कहंदे हो, खुर्शीद आखो आफताब क्यों कहंदे हो, सूरज आखो रवि क्यों कहंदे हो, या रवि आखो भान क्यों कहंदे हो। पर जिहड़ा महासूरज है ना, वो परमात्मा, इस ते बड़े झगड़े ने। राम क्यों कहंदे हो, अल्लाह आखो, अल्लाह क्यों कहंदे हो, राम आखो। परमात्मा दे नाम ते अज तक पता नहीं कितने झगड़े हो चुके ने और हो रहे हैं, और पतना कितना खून खराब है। राजनीति करके भी इतना खून खराबा नहीं होया जितना धर्म दे नाते होया। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, कलगीधर पातशाह कहने हे प्रभु तेरा कोई नाम नहीं। अकाल उस्तत दे तेथे तक कहने ने कहा नाम ताको कहा कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मो नावे। हे प्रभु मैनु कुछ नहीं पता तेरा की नाम है, मैनू कुछ नहीं पता। गुरु गोविंद सिंह दसवें गुरु नाम, कहा नाम ताको कहा कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मो नावे। क्योंकि हर नाम तेरे ते पूरा उतर जाता है। मैं किस तरह कह दे ये नाम है ते नहीं, ये है ते वो नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज इस नूं ही स्पष्ट कर देन, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, सदके जाने जितने भी तेरे नाम है। जिस जिस नाम नाल तेनू याद कर देन को। इस अयाली ने सुनिया परमात्मा दा कोई घर थां ठिकाना नहीं है, सीमत ज्यों दी सोचनी सी विचारे दी, ला मकान ला शरीक, उदा कोई शरीक नहीं है। हस पिया ए अयाली, पेड़ा नू वापस ले आ उत्थे, कहिंदा ले खुदा गल ते तेरी बड़ी सुनदे हुंदे सी, पर अज पहली दफा पता चलिया तू मेरे वर्गा ही है। साडा भी कोई घर गाड कोई नहीं, तेरा भी कोई नहीं, साडा भी कोई शरीक कोई नहीं, ना मां है ना प्यो है ना भरा है ना भैण, कोई भी नहीं है, तेरा भी कोई नहीं। चलो हुण होर ते किसे नाल मेरी सांझ नहीं बनदी, क्यों किसे दा कोई है, किसे दा कोई है, किसे दा कोई अपना ते कोई नहीं। गुरु अंगद देव जी दा एक बड़ा कीमती श्लोक है, किस ही कोई कोए मंज निमाणी इक तो। किथों इसने फरियाद की थी, हे प्रभु हे खुदा किसे दा कोई है, किसे दा कोई है, किसे दा कोई अपना ते कोई नहीं, ना कोई भैन है ना कोई भरा है, ना माता ना पिता, कोई संतान नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई मां बाप नहीं, कुछ भी नहीं, कल ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਧਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ, ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇੜਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪੀ, ਤੂੰ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਲੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਪ ਚੜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਘੋਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਪ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਜਾਣ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਖੁਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਟ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੰਢਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਸਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਪ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਰੋਮ ਨੇ ਮਸਨਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕੁਜਾਈ ਤਾਸ਼ਮੰ ਮੰਮ ਚਾਕਰਤ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਕੁਜਾਈ ਤਾਸ਼ਵੰ ਮੰਮ ਚਾਕਰਤ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੋਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕੁਜਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਜਾਈ ਤਾਸ਼ਵੰ ਮੰਮ ਚਾਕਰਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਥੱਪੜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਦਾ, ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਘੋਟ ਕੇ ਪਿਲਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੀ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਟਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਸਤਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ। कहो दूर थे। रोन लग पे आया ले कहिंदा सारे जहान दे एक तो ही ते सी ओ वाइज कहिंदा सी मेरे वर्गा पता है संबंध किथे जुड़दा है या दूजे नु अपने वर्गा बनाओ या खुद दूजे वर्गे बनो उंज नहीं जुड़ेगा संबंध या कोई गुरु वर्गा बने या गुरु नु अपने वर्गा बनाए गुरु साडे वर्गा नहीं बनेगा अगर साडे वर्गा बन जाए तो गुरु गुरु ही नहीं है प्रभु साडे वर्गा नहीं हो सकता अगर साडे वर्गा हो गया तो प्रभु प्रभु ही नहीं है सानू प्रभु वर्गा होना पड़ेगा परमात्मा वर्गा हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए मनुख नु वसीला दिता है उस परमात्मा ने परमात्मा होण दा हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए हरि दा जन हरि दा भगत हरि जैसा चाहिदा है स्वभाव करके स्वभाव करके फरियाद पिया करदा है रो के एक तू ही ते सी मेरे वर्गा पर ए रैबर कहिंदा है ए पैगंबर कहिंदा है तू मेरे वर्गा नहीं है जारो जार रोन लग पिया दो रोटियां बनाईया दरिया दी दरिया रह गईया दुध भी धरे दा धरा रह गया उसने पीता नहीं इतने उदे दिल नो चोट लगी को तूर ते बैठ रहे ही मूसा हमेशा जुड़ जांदा सी इको ही दफा नाम दोहरांदा सी ते जुड़ जांदा सी अज नहीं जुड़ रहे रात नू लंघन नू आ गई तारे टुटदे टुटदे खिसकन लग पैण प्रभावित हो गई लेकिन मूसा दा मन नहीं जुड़िया फरियाद की थी मूसा ने ए खुदा मेरे कुल की गलती हुई है मेरे कुल ऐसी की भूल हो गई है जुड़ना परमात्मा दी बख्शिश है मनुख दी अपनी मेहनत नहीं जप करना मनुख दी मेहनत है जप समाधि बन जाए रस बन जाए आनंद बन जाए ये उदी रहमत है मनुख दी मेहनत नहीं है इस चक्कर च ना पैना रोटी कमाना रोटी पकाना रोटी खान तक ही मनुख सीमत है खून ते परमात्मा ने बनाना है कोई ऐसी थोड़ी बनाना है वो साडे हाथ च रखिया ही नहीं उसने खादे भोजन दा खून ना बने तो फिर असी हो सकते हैं गुरुद्वारे आना सत्संग करना बाणी जपना वाहेगुरु मंत्र जपना इबादत करना अमृत वेले उठना है ते मनुख ने करना है पर कोई समाधि लीन हो जाए तो उदी बख्शिश है ते उदी रहमत है मनुख दे वास दी गल नहीं है, है ही नहीं इस चक्कर च ना पैना ये उदी रहमत है मूसा कहिंदा सी ए खुदा तेरी रहमत मेरे ते हमेशा बरसदी सी अज की है अज मेरा मन क्यों नहीं जुड़िया तेरे च अलहाम होया नहीं जुड़ सकेगा क्यों तू अज एक जुड़े हुए नु तोड़ के आया एक जुड़े हुए नु तोड़ के आया वो जिहड़ा अलहाम होया है उनू मौलाना रोम ने अपनी मसनवी च इंज लिखिया है तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी तू इस दुनिया दे जोड़न नहीं आया तोड़न लई नहीं तू ते तोड़ के रख दिता है भावे ओ ना समझ सी पर उन्हें मेरे नाल संबंध जोड़ लिया सी वो जिहड़े अपने गुण मेरे सामने रखदा पिया सी मैनू बड़े प्यारे लगे बहुत प्यारे लगे एक गल होर भी अर्ज करदे हां अगर मनुख चतर ते चलाक नहीं है ते संसार विच कामयाब नहीं हो सकेगा पर मनुख भोला नहीं है धर्म दी दुनिया च कामयाब नहीं हो सकेगा चलाक बंदे दी धर्म दुनिया च नहीं चलती भोला वा संसार विच नहीं चलता कबीर कहिंदे ने चतर आई ना चतर भुज पाईए रे जन मन माधो सिउ लाईए गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने सह सियाणपा लख होवे तां इक ना चले ना चतराईयां सियाणपा आवे किते ना का कितनी चतराई इकट्ठी कर ले, कितना पार दा ज्ञान इकट्ठा कर ले, कितनी सियाणप इकट्ठी कर ले, कितना तू चराग हो जाए, हाजिर जवाब हो जाए, परमात्मा दी दुनिया च नहीं चलती। उत्थे ते भोला भा चलता है, मासूमियत चलती है, उत्थे ते श्रद्धा कम आउंदी है, उत्थे ते अंदरों बाहरों एक हो जाना एक कम आउंदा है। अलहाम होया तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी, तेनू मैं भेजिया सी जगत विच लोगां दे दिल जोड़न वास्ते, पर तू तिक जुड़े नू तोड़ के आ गया। वो जिहड़े गुण अपने दसदा पिया सी मैनू बड़े प्यारे लगे, बहुत प्यारे लगे, तू ते तोड़ के रख दिता। जा हुण तू मेरे नाल तां जुड़ सकेगा, पहले उन्हों जोड़ के आ, उन्हों जाके कह खुदा तेरे वर गई। इतिहास है, मूसा वापस आया, ओदे पैरी पे उस कोल माफी मंगी है, पता की आख है, ऐ आयाली खुदा कहिंदे खुदा तेरे वर गई है, तेरे वर गई। साडे गुणा ते भी नहीं रिझिया, साडे ज्ञान ते भी नहीं रिझिया, तेरे भोले बाते रिझ गए। इनू भाई साहब भाई गुरुदास जी कहंदे ने, कहां को करे कछ होत ना कहूं के किए, जौं की प्रभ मान ले सर्व सुख ताहे जीव, जिदी मन लवे। और उन्हों भोले चंगे लगते ने, भगत भोले होंगे, भोले भाए मिले रगर आया। भगत कबीर जी कहते ने, कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगर आया। भारत दे एक चोटी दे जोगी नू भोला नाथ करके कहते ने शिव जी नू, भोला नाथ, भोला शं, भोला भोला। परमात्मा दी दुनिया च यह भोलापन चल रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, सह सियाणपां लख होवे, पर यह सैकड़े तरह दियां लखां तरह दियां सियाणपां नावन संसार दे ते कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। पर निरंकार दी दुनिया च नहीं चलती है, धर्म दी दुनिया च नहीं चलती। जब अंतरमुखी होना है, सारिया सियाणपां नूं परे रख देना है। सियाणपां दे आसरे ते बाहर दी सियाणपां दे आसरे दे उत्ते मनुख दे हंकार दी यात्रा है, निरंकार दी यात्रा नहीं। इतनी मैं अर्ज कर रहा, अहंकार सब तो अगे होना चाहता है, सब तो अगे होना चाहता है। विनयवा मनुख सब तो पिछे होना चाहता है, सब तो पिछे होना चाहता है। हैरानगी है कि भगत जन अवतारी पुरश थां थां ते अपने आप नूं कह देंदे ने, असी कोई चंगे नहीं, कोई भले नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ते ऐलानिया कहंदे ने, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। शेख शरफ सूफी फकीर दे पोतरे ने गुरु नानक ते प्रश्न कर दिता सी, कौन हो तुसी, थोड़े बोलां ने प्रभावित बड़ा कीता है, थोड़े इत्थे आउण नाल फिजा बड़ी मुअत्तर हो गई है, तुसी साडे कोल की बैठे हो, इंज लगदा है जिवें खुदा बैठ गए, कौन हो तुसी। जद बार बार शेख शरफ सूफी फकीर दे पोतरे ने पुछिया, कौन हो तुसी, भावें व्याकरण दे ग्रामर दे ज्ञानी इसदे भिन्न भिन्न अर्थ करते ने, सतगुरु इन जवाब देते ने, मानस मूरत नानक नाम, श्री राग का शब्द है, मनुख की मूर्तियां मनुखा, मानस मूरत नानक नाम, पर करणी कुत्ता दर फरमान। इतनी विनम्रता, इतनी निर्माणता। जवसी साहब दियां चार पौड़ियां दे कुदरत दी विचार है, कुदरत कौन कहां विचार, वार ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। इहदे च पहले चानण पक्ष नूं साहिब लैंदे ने, असंख जप असंख वाह, कुदरत दे च की हो रहे और कौन कौन ने, बड़े जपीश्वर ने, बड़े तपीश्वर ने, बड़े भगत ने, बड़े ज्ञानी ने, बड़े दानी ने। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। इस तरह का खुलासा सुखमनी साहब दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया। कई कोट हुए पुजारे, कई कोट आचार व्यवहारी, पता नहीं कितना यह चानण पक्ष। फिर सतगुरु रात नू अगे करदे ने, रात भी है। असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम कोर, असंख अमर कर जाए जो, जबरदस्ती अपना हुक्म चलांदे ने। अगले दी तौफीक भी नहीं देखते कि अगला ये हुक्म मन भी सकेगा कि नहीं, इतनी उसकी समर्था भी है कि नहीं, पालना भी कर सकेगा कि नहीं, पर भार बोझ बन जाते ने, जबरदस्ती चलांदे। असंख अमर कर जाए जो, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए। इन्हां सारिआं दी गिणती करदिआं करदिआं करदिआं करदिआं तीन पंक्तियां विच ते मूल पंक्ति ये कुदरत कौन कहा विचार, पर इस पौड़ी विच ये नहीं है। तीन पौड़ियां विच मूल पंक्ति यही है, कुदरत कौन कहा विचार। पता इस पौड़ी विच केड़ी पंक्ति है, नानक नीच कहे विचार। नीचा की गिणती करद्या करद्या, मूर्खा की गिणती करद्या करद्या, पापिया की गिणती करद्या करद्या, चोरां की गिणती करद्या करद्या, फिर उसे कतार दे उसे लाइन सतगुरु आप खड़े हो जाते। नानक नीच कहे विचार, इन्हां नीचा की विचार करने वाला कौन है, गिणती कौन कर रहा है। नानक नीच कहे विचार, वारे ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। एक होर पहलू भी इतिहासक में थोड़े सामने रखा, गोविंदवाल साहब की गल है। धन गुरु अमरदास जी महाराज अपने सिंघासन ते बैठे, गुरु अंगद देव जी महाराज दे साहबजादे दातू जी शरीकां दे भड़काए हुए क्रोध नाल भरे हुए आ गए। संगत च आउंदे आई खिच के लत मारी धन गुरु अमरदास नूं, सिंघासन ते साडा सी तुसी जा बैठे, सौगात ते साडी सी तुसी सिंघासन ते बैठ गए। खिच के सीने च लत मारी, सतगुरु थले गिर गए। बिरद शरीर सी, 84 साल दी आयु, ओ जवान, बिल्कुल नौजवान ताकतवर। गिरदिया सार सतगुरु अपने आप संभालदे ने ते दातू दे चरण पकड़ ले ते जो कुछ मुखार बिंतो बोले ने कवि संतोख सिंह जी ने गुरु प्रताप सूरज दे च इंज लिखे ने, एक तो सेवा करत रहे हूं, दुतिये बैते बिरद बए हूं, या ते अदक शरीर कठोरा। दातू जी मेरा शरीर बड़ा सख्त है, हड्डियां बड़िया करड़िया ने, क्योंकि एक उम्र मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, बुढ़ा हो गया, बिरद शरीर है, हड्डियां सख्त ने, चमड़ी सख्त है। दूसरा, मैं सेवा करड़ी करदा रहा, तप्पड़ झाड़दा रहा, लकड़ फाड़दा रहा, लंगर वंडदा रहा, लंगर बनांदा रहा, पानी ढाउंदा रहा, करड़ी सेवा करदा रहा, उस नाल मेरा शरीर करड़ा हो गया। दुतीये बहते बिरद बहे, या ते अधिक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मर्दर न थोरा। थारे चरण थोड़े पैर बड़े कोमल, बड़े कोमल, मेरा शरीर बड़ा सख्त, तुसी खिच के मैनू लत मारीए, थोड़े चरणा कोई मौत ते नहीं आई, कोई तकलीफ ते नहीं हुई। दातू हैरान, खिच के लत भी मैं मारी ते हाथ जोड़ के मेरे अगों खड़े, इन्ने विनम्रता। मक्के दे इमाम ने खिच के गुरु नानक दे सीने च लत मारी है, जीवन मारी लत दी, केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी। कि कौन महान काफरां दा काफर सुत्ता पे, सीने च खिच के लत मारी। वकत दा रैबरी पुरुष ब्रह्म ज्ञान दी मूर्ति तमाम रब्बी शक्तियां नाल भरिया होया हिरदा कि कौन महान काफरां दा काफर है खुदा दे घर दी तरफ पैर करके सुता पे उत्थे सतगुरु कहंदे ने ए इमाम जिस पासे खुदा नहीं है उस पासे मेरे पैर कर दे भाव ते इतना सी मैं जिधर देखना है ते खुदा है ते खुदा ही। भाई गुरुदास जी लिखते ने फिरिया मक्का कला दिखाई सीने च लत खा के और महान गाल सुन बहुत वड्डी गाल है कौन काफरां दा महान काफर सुत्ता पे किसे सुहागण नूं वेसवा कह देना है बहुत वड्डी गाल है रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नूं काफर कह देना एक केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी पर सतगुर सहन कर गए बाहर दी यात्रा सारी हंकार दी यात्रा है अंदर दी यात्रा निरंकार दी और विनम्रता दी यात्रा है बाहर दी यात्रा में सब कुछ हो जावा और सब तो अग्गे निकल जावा अंदर दी यात्रा में सब कुछ खो जावा मिट जावा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं अंदर मनुख ना कुछ हो के सब कुछ हो जांदा है और बाहर सब कुछ होके भी कख नहीं होंदा ये भी महर्ज करते हैं ये भी ध्यान गोचरे है बाहर अगे निकल के भी इनू पता चल जांदा है कुछ भी नहीं ठीक है मैं बथेरिया तो धन तो अगे निकल गया शक्ति तो अगे निकल गया प्रभुता तो अगे निकल गया या कला दे चगे हैं गुणा दे चगे हैं रूप दे चगे हैं रंग दे चगे हैं जात दे चगे हैं बाहर सब कुछ मिलके भी पता चल जांदा है कुछ नहीं मिलेगा बाहर सब कुछ होके भी पता चलता है मैं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं और अंदर जद मनुख सब कह देंदा है मैं कुछ भी नहीं और इस अवस्था ते पहुंच जांदा है सब कुछ हो जांदा है बूंद सागर हो जांदी परमात्मा वर्गा हो जांदा है अंदर दी यात्रा विनम्रता दी यात्रा है ना कुछ होने दी यात्रा है मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं बड़ा सुंदर इस दे ते एक आलम ने अपना ख्याल दिता है अज राह चुनार के सलामत न कुनत समाप्ति करिए रस्ते दिच इस ढंग नाल चल कि तेरे चलन नाल किसे दा रस्ता ना रुके तू किसे दे रस्ते दा रोड़ा ना बने तू किसे दे रस्ते दा कंडा ना बने तू किसे चल दे मनुख दे पैरां नूं रोके ना अज राह चुनार के सलामत ना कुनद कई मनुख मनुख नहीं आंदे रोड़े आंदे ने कंडे आंदे ने उन्हां दी कोशिश आंदी है रोकिए ये पछड़िया ही रहे अज राह चुनार के सलामत ना कुनद बा खलक चुना जी के कयामत ना कुनद खलकत दे च मखलूक दे च इस ढंग नाल रहे कि तेरे रहन नाल कयामत ना होवे कई बंदे बंदे नहीं आते बस चिंगारियां ही आते हैं जिथे बैठे कोई ना कोई पांबड़ ते बालन गए कोई ना कोई अग ते लाण गए कुछ ना कुछ ते चिंगारी छोड़न गए बा खलक चुना जी के कयामत ना कुनद दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा दर पेश न खानद ओ इमामद न कुनद कदी तेरा ख्याल आवे ना कि मैं मस्जिद दे जाना है ते नमाज पढ़नी है अगे अगे होके नमाज ना पढ़ी मता तेरे अगर ख्याल पैदा हो जाए मैं इमाम हा और मैं खुदा दे घर दे च भी नंबर वन ना मेरा पहला नंबर बाकी सब पछड़े हुए बाकी की ने कुछ भी नहीं इस घर दे ते जो कुछ ना कुछ हो जांदा है वो सब कुछ हो जांदा है और जो सब कुछ होने की कोशिश करता है कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं होता एक हकीकत है एक बहुत सच्चाई है सब कुछ होने दे च सब कुछ हो जावा उस दे च मनुख जितनी मेहनत करता है यतन करता है उदा सवा भाग भी मनुख इस दे च नहीं लांदा कि मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं और वाकई जिस दिन ये ना कुछ हो जाता है सब कुछ हो जाता है। बीज ना कुछ होके एक दिन फल बन जाता है, दरख्त बन जाता है, पर पहले ही तो मिटता है। मैं कुछ भी नहीं। तो मैं अर्ज करा एक बाहर दी यात्रा है, एक अंदर दी यात्रा है, एक अहंकार दी यात्रा है, एक निरंकार दी यात्रा है। इन मैं पूर्ण तौर से धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे चों खोलना सी, पर समा अपने ढंग नाल जो है चला गया। 2 मिनट मैं आप जी दे होर लवां। अंदर दी यात्रा नूं ही ध्यान साधना कहिंदे ने। ध्यान दा अंदर जाना, ध्यान दा बाहर जाना, बाहर दी यात्रा है। बाहर मनुख उदों दुखी हो जांदा जद उस तों कोई अगे है, किसी चीज दे च भी अगे होवे। प्रभुता च अगे, धन दे च अगे, शक्ति दे च अगे, कला दे च अगे, गुणा दे च अगे, रूप रंग दे च अगे, किसी चीज दे च ही अगे दुखी हो जाएगा। तो सारी दुनिया च मनुखां नूं बहुता दुख इस गल दा हुंदा है, ये अगे कहां है। अपने ही दुख मनुख दे बथेरे आउंदे ने, पर एक दुख होर सहेड़ लैंदा है, ये अगे क्यों। इस नूं पराई तात कहिंदे ने, महाराज ने जिक्र किया। जिस दे अंदर तात पराई होवे तिस दा कदे ना होवे भला, पराई तात लई फिरदा, ये अगे क्यों है। अंदर दी यात्रा जद कोई अगे आउंदा है तो खुश हो जांदा है, उहदे कदमां विच बैठ के प्रसन्न होंदा है। हर के संत बताओ मार्ग, हों पीछे लाग चली, पीछे चलण विच खुशी होंदी उसकी, उत्थे ना कुछ होण दे चोनों खुशी मिलती है। जद कोई अगे जा रहा होंदा है उहदी उमंग वध जांदी है, तरंग वध जांदी है, सिर्फ मैं ही प्रभु दे मार्ग ते नहीं चलिया, कोई होर भी चलिया और बहुत अगे लंघ गया, उहनूं खुशी मिलती है। बाहर दी यात्रा जो अगे लंघ गया है, जैलसी आउंदी है, ईर्षा आउंदी है, तात आउंदी है, पर अंदर दी यात्रा जद कोई अगे लंघ जाए खुशी आउंदी है। और अंदर दी यात्रा जिस दिन मनुख ना कुछ हो जाता है उस दिन परमात्मा हो जाता है। इसका जो पूर्ण खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने बयान किया है, किसी वक्त सतगुरु ने फिर नदी नाव संजोगी मेले कराए ते खोलांगे अज इतनी सेवा परवान करनी, साहेब रहमत करन थोड़े ध्यान नूं अंतरमुखी लै जाण। यात्रा अंदर दी होवे और अंदर दी यात्रा विच जिहड़े गुण पनपदे ने वो कागजी फुल नहीं आउंदे, प्लास्टिक दे फुल नहीं आउंदे, असली फुल आउंदे ने। उहनां विच जिंद जान आउंदी है, उहनां दी बकायदा बुनियाद आउंदी है, और वो ऐसे गुण आउंदे ने जिन्हां दे उत्ते परमात्मा सदके जांदा है, परमात्मा गलवकड़ी च लैंदा है। इस वास्ते भगत परमात्मा नूं प्यारे ने, भगत सब तो नेड़े ने, सतगुर सारिआं नूं भगती दा तोहफा, भगती दा ए महान दान झोली विच पावे ताकि साडा जीवन धन धन हो जाए। मैं फिर अर्ज करा, सुन के भरोसा बनदा है, पर भरोसा साडा कोई तोड़ सकदा है? निक्की निक्की गल ते भरोसे टुट जांदे ने।
1: ओंकार सतनाम प्रताप रूप निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूने सैभं गुरु प्रसाद मुकुसरे शास्त्र खटो पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मान योग गुरु रूप साहब सिंह जी फतेह प्रवान करने, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख दे दो रूप मने ने, निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप विच ओ सूक्ष्म है, अदृश्य है, सरगुण रूप विच ओ दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है, बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮਕਾਨ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ, ਉਸ ਅਰੂਪ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਪਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਿਟਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਉਤਪਤੀ ਪਰਲ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਜਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੇ ਨੇਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਧਨ ਸੋਤੀ ਫਿਰ ਸਦ ਜਾਗਣ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਅੱਧੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਅੱਧੇ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਰਸਨਾ ਗੀਤੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ। ਉਹ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਪ ਕਰਕੇ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਜਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਰੰਭ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਸਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੱਭਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।

कर देने। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखो नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर कहने एक राम नाम दा हीरा लबे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना वेचना चाहना। कहने संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे छुपाने की कोशिश करता है, पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों तो उसके अंदर एक दसण की भुख पैदा हो जाती है कि मैं बाकियों नूं भी दसा। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रतना दी। सारे पहाड़ां दे सोना चांदी नहीं आउंदा ते समुंदर दे सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं आउंदे, पर हर जीवन दे अंदर प्रभु दा नाम है। नवनिध अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उसके अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहते हैं मैं तलाश कर रहा उस मंडी दी, उस बाजार दी, जिथे हीरे बिकते ने मैं बेचना चाहता। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन। पटन कहते बाजार नो, आप कहते कोई बाजार ही नहीं है कितने बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच बिकेगा ना, हीरियां दी मंडी च बिकेगा। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदण दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहिंदे ने हीरा कोल है वेचना चाहना, जो अगमी दौलत मैनू मिली है मैं दसना चाहना, जो अगमी रस मैनू मिले है मैं जगत नू समझाना चाहना, हीरा मिले है बेचना चाहना। मंडी कोई नहीं, पता है मंडी की है? सत्संग। हर शहर में सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा। गली गली विच मंदिर है, सत्संग किधरे किधरे। गली गली विच गुरुद्वारे ने, सत्संग किधरे। सुनिया पईयां ने मस्जिदां, खाली पए ने मंदिर, या किधरे कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चल दियां पईयां। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहिए। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल दियां ने। रैराज साहब का पाठ टेप ला लो, आसा दीवार का कीर्तन टेप ला लो, सुनो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन आंदा जा रहा, जे सारा दिन भी टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाना? बस मनुख भी इस तरह का ही हो गया, तो भी मैच कर दिया, मशीन ही हो गया। मशीन की तरह की, यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है। जागृत नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। जिड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस विच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना। गुरु से जो ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते हैं कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर, इन दो शहरों के बाजार ने, उन्हों का नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से,
ਜੈਪੁਰ ਦਾ

0: ਖਬਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਸਿਰਫ ਹੀਰੇ, ਰਤਨ, ਪੰਨੇ, ਲਾਲ, ਮੂੰਗੇ, ਨੀਲਮ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਪੰਨੇ, ਜੌਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਆਗਰੇ ਦੇ ਜੌਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਮੜਾ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਮਾਸ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੌਹਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੌਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਵੇਚਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੜਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੜਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਟਣ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਮੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੰਡੀ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕਦਮ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਪਟਣ, ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਖੋ, ਪਟਣ 'ਤੇ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਖੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਪਾਰਖੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਪਾਰਖੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਕੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਜੌਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 14 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਹਿਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌ ਰਤਨ। ਹੀਰਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੈ, ਪੰਨਾ ਹੈ, ਮੂੰਗਾ ਹੈ, ਨੀਲਮ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਹੈ, ਮੋਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌ ਬਣਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੜੋਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਦਿਖਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੌਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਖੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਟਣ, ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਭੀੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। नहीं पटन नहीं पारखो। आप कहिंदे ने कदी कदाई भरमन करदिया करदिया किसे बाजार विच पारखो भी मिल जाते। समझ पता है सत की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है। चर्चा ही हो रही है सत दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही है, परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा है गुणा देना। और जैसे जैसे मनुख के अंदर गुण वधदे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख की पहचान गुणा करके है, ये किन्नी क दया है, ये किन्ना क प्रेम है, ये दृष्टि विच कितनी समानता है, ये किन्ना क निर्वैर है, किन्ना क निर्भय है। इन्हां दैवी गुणा के पैमाने नाल ही नापना पैंदा है ये मनुख किन्ना क धार्मिक है। और किस तरह नापोगे? चानना सारे का सारा सूरज का है, गुण सारे दे सारे परमात्मा दे ने। सब गुण तेरे मैं ना ही को, गुण तो सारे उस दिन रोशनी इत्थे गुरुद्वारा हाल दे हो रही है, पर रोशनी तो सारी सूरज की है, गुण सारे ही परमात्मा दे ने। कबीर कहिंदे ने भरमन करदियां करदियां खुशी हो गई एक दिन कि बाजार भी लभ पिया ते पारखू भी लभ पिया। उन्हूं समझ आया समदृष्टि किसनों कहिंदे, दया की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, निर्वैरता की है, निर्भयता की है, शील की है, संयम की है। ग्राहक सिर्फ आया ही नहीं बाजार विच, उन्हूं परख भी है, समझ है। तो कबीर कहिंदे मन खुश हो जाता है, चलो पारखो मिल गए। कहिंदे ने संगीत कोई गा रहा होवे, कोई आलाप कर रहा है, पर जब कोई संगीतकार किसी संगीतकार नूं दाद देंदा है तो उसनों जिहड़ी रूहानी खुशी आउंदी है दूजियां दे सिर हिलाण नाल नहीं, जिन्हां नूं कख नहीं पता संगीत है कि वास्तविक राग है कि। कुछ बोलां नूं कुछ अखरां नूं तरतीब दे दईए तो कविता दा जन्म हो जांदा है, आवाज नूं तरतीब दे दईए तो संगीत दा जन्म हो जांदा है, और जिंदगी दे हर कर्म नूं तरतीब दे दईए तो भगती दा जन्म हो जांदा है। उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सारा तरतीब दे चल गया, सारा मर्यादा दे चल गया। आवाज नूं मर्यादा विच करना साधना दी लोड़ है, बोलां नूं तरतीब विच करना सीखना पैंदा, मेहनत करनी पैंदी है, जिंदगी दे हर कर्म नूं तरतीब विच करना अभ्यास करना पैंदा, उंज नहीं होंदा। तो कबीर कहिंदे ने खुशी हो जांदी है जद कदी कोई पारखो भी लभ पैंदा है, गल नूं समझदा है, पता है। पर कबीर कहिंदे ने खुशी मेरी फिर निराशा दे बदल दी, क्यों? पारखू है ग्राहक नहीं है, लेना नहीं चाहता, समझते है उस। नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक, वो ग्राहक नहीं है, पारखू तो है, समझते है गल दी, पर इसके अंदर ग्राहकता नहीं है, तड़प नहीं है, खिच नहीं है, लेने की इच्छा नहीं है। आप कहिंदे ने कदी कदाई किसे सत्संग किसे शहर किसे मंडी देखदा पारखू भी लभ पिया ग्राहक भी लभ पिया लेना चाहता है, उहदे अंदर लैण की भी तड़प है, उहदे अंदर लैण की भी खिच है, वह लैना भी चाहता है, वह प्राप्त भी करना चाहता है। तो भगत जी कहिंदे ने बहुत मन खुश होंदा है कि ग्राहक भी लभ पिया, पर आप कहिंदे ने मेरा दुख अपनी थां ते ग्राहक ते लभे पर मुल नहीं देना चाहता, मुफ्त दे च मंगदा, हर छे सूद बरायद देर ना पायद। कहने जिहड़ी चीज छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए वो कोई खास नहीं आती। पहाड़ के उपर गीटियां पत्थरों च मिल जाएंगे हीरे ते लभने पैंदे। संख ते सिपियां सागर के कंडे च लभ पैंदियां ने मोती ते गहरे तल दे चो लभने पैंदे। भी छेती मिल जाए जल्दी मिल जाए वो चीज कोई खास नहीं आती। एक रब्बी नहीं आना। कबीर कहिंदे ने पारखो भी लभते है ग्राहक भी लभते है। समझ भी है उसनों लेना भी चाहता है मुल नहीं देंदा। नहीं गाहक नहीं मोल। इत्थे कबीर कोल पुछिए फिर मुल की है भी दस दो मुल की है। तो आप कहिंदे ने कंचन स्यों पाइए नहीं तोल मन दे राम लिया है मोल। मन अपनी सोचनी मन अपने विचार मन अपनी चितवनी ये भेट कर दे। मनुख के विचारां दे वासना है हंकार है लोभ है ये भेट कर दे। गुरु के विचारां दे करतार है प्रेम है दया है सील है संजम है ये अदला बदली करनी पड़ेगी। ग्राहक की करता है कुछ पैसे देंदा है वस्तु ले लेंदा इत्थे अपनी मत भेट कर ले गुरु की मत ले जा। गुरु की मत विच ज्ञान है तेरी मत विच अज्ञान है। गुरु की मत विच प्रेम है तेरी मत विच घृणा है। गुरु की मत विच समदृष्टि है तेरी मत विच वितकरण है। गुरु की मत विच भक्ति है तेरी मत विच नास्तिकता है। गुरु की मत विच निर्वैरता है निर्भयता है तेरी मत विच वैर विरोध ने। ये मत भेट कर गुरु की मत ले ले। पर गजब की गल है मनुख कौड़ी दे के भी हीरा नहीं लेना चाहता। कौड़ी दे के भी हीरा नहीं लेना चाहता अपनी गंदी मत दे के भी उज्जवल मत गुरु की नहीं लेना चाहता। जबकि गुरु कहिंदा है गुरु की मत तू ले इयाने भगत बिना बहु डूबे सियाने। पर एक शर्त है त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाव दियो। धन अर्पण करना अन्न अर्पण करना वस्त्र अर्पण करने सोना चांदी अर्पण करना ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। पहले पहले बच्चा पूर्णिया ते लिखता है पूर्णे पाने पैंदे। ये सब पूर्णे पाने ने धन अर्पण करना फुल अर्पण करने वस्त्र अर्पण करने अन्न अर्पण करना ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। और जैसे मन अर्पण किया परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। रोज सत्संग विच आना कथा कीर्तन सुनना ये सिर्फ अपने आप नू तैयार करना है कि एक दिन असी अपनी मत भेट कर देंगे अपना मन भेट कर देंगे। कि जिस दिन अपना मन देण नू जी करे मत भेट करन नू जी करे समझ लो सत्संग का फल मिल गया सत्संग की सफलता प्राप्त हो गई चौली विच पै गई। ये फल है क्योंकि अपना मन जैसे भेट करता है मनुख ते गुरु की मत प्राप्त आती है तो गुरु की मत विच ही परमात्मा है। मनुख की मत विच पदार्थ ने मनुख की सोचनी विच की है संसार है पदार्थ ने। गुरु की सोचनी विच परमात्मा है निरंकार है। मत भेट की थी अपनी ले ली गुरु की मत उसे मत द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अपनी मत देते शराब पीना है गुरु की मत विच अमृत छकना है। अपनी मत देते दोपहर न उठना है गुरु की मत विच अमृत वेले उठना। बस जैसे गुरु की मत आई सारे ही दैवी गुण जो है आ जाते हैं। गुरु की मत विच ही परमात्मा है। गुरु की मत विच ही सारा अनंत परिपूर्ण परमात्मा का रस है। सतगुर रहमत करन ते सत्संग करद्या करद्या साडा मन तैयार होवे ते ए मन भेट कर देना है गुरु की मत लै लेनी है इतने शब्द प्रवान करना। सतगुर रहमत करन बख्शिश करन ओ महान हीरा ओ महान रब्बी दौलत ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਪੰਗਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਛਾਵਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

तन भी कंचन हो गया मन भी भरी संगत महाराज कहंदे अज तो इहदा नाम मुरारी है प्रेमा कौड़ी महाराज कहंदे मुरारी नाल कौड़ी बोलना औखा होऊ अख सतन इहदा नाम सी मुरारी रख दे हुण इक जकारा देना जिहड़ा मैं हिल गया पढ़ गुरु अमरदास जी ने नजर करके ए मुरारी प्रेम कौड़ी नू मुरारी नू ए नजर करके ही एहो जी अवस्था ते पुजा दिता के नाम दूजे नू जपान वाली सत्या दे दे दे दूजे

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जेह रूप रंग रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भगत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वाह चेत मद भर संत प्रसाद गुण गण उदार महिमा पार असन भंग उपमान गण पो प्रकाश निस्दन नाश

चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दान चत्र चक्र जान चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाल चत्र चक्र काल चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान चत्र चक्र दान चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र पर पवित्र परथी से आदि से अदर से अकर से भगवती छंत परसाद कथते

के सर्वतर देशा के सर्वतर पेशा के सर्वतर राजा के सर्वतर साजा के सर्वतर दीन के सर्वतर लीन के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देशा के सर्वतर पेशा के सर्वतर काल के सर्वतर पाल के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजा के सर्वतर राजा के सर्वतर सोख के सर्वतर पोख के सर्वतर तराण के सर्वतर प्राण के सर्वतर देश के सर्वतर पेश के।

सरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूप निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी।

वन तम बल तमीज समस्तुला जीज परम परम ईसा समस्तुला दीसा देसुला लेख मेसुला पेख जिमीनुल जमह मिकुल।

महंत देश विस बेअंत अन भवन आसत रत धर तुर आसा जन बाहो कैसा दाह ओंकार आदि कथन अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात अज जन बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठाटा पार अडीठ धर्म अत ढीठ।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामं विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सो धर्मं विभूते।

संबत सत्रह सहस पण ज अर्ध सहस फोन तीन कह ज भाद्रव सुधि अष्टमी रावारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिर्फ सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा।

उस्माद नाद उस्माद वेद उस्माद जीव उस्माद भेद उस्माद रू उस्माद रंग फिर जंत उस्माद पानी उस्माद अग्नि खेडे बेडानी उस्माद धरती उस्माद खानी उस्माद साध लगे परानी उस्माद संजोग उस्माद विजोग उस्माद।

कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत बहु सुखसार कुदरत पातालिया काशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर।

ये जीव बहुत जन्म प्रमियाता सतगुरु सब सुनाया, सतगुरु जीव दाता को नहीं सब सुने लोक सुबाया, सतगुरु मिले सच पाया, जिन विचो आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया, जिन सचो सच बुझाया।

0: जाए संजम दुख जाए पावड़ी
1: सेव कीती संतोखे जन सचो सच त्याया उनी मंदे पैर न रखियों कर सुकृतम कमाया उनी दुनिया तोड़े बंधना पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित दीवे चढ़े सवाया।

0: जिन करते करना किया चिंता फिर करनीता है सो करता चिंता करे जिन पाए जग तिस ज्वाधी स्वस्थ तिस दबान पक नान सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख निकिया चंगियाँ लख

श्याम कहे सीतंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावेर कह रहा प्रभु राम नाम देवा मैं सूर ना ही लय अपराच जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जातम पाया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में अंकिया कल में बेत थर्मण हुआ ना खुदाई लो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया।

श्री गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह जी धन धन सत गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सचे पातशाह जी धन धन सत गुरु श्री गुरु ग्रंथ

0: प्राइस दीजिए सब्जी भले खाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: गुरबाणी विचार दी सेवा विच अपना योगदान पा रहे हन ब्लूबेरी दे उत्पादक अते प्रोसेसर लाली फार्म्स स्वर्गवासी रजिंदर सिंह लाली जी दी पवित्र याद विच। इस पवित्र सेवा विच सहयोग देन लई असीं लाली फार्म्स दे दिलों धन्नवादी हां।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: गुरबाणी विचार दी सेवा विच अपना योगदान पा रहे हन ब्लूबेरी दे उत्पादक अते प्रोसेसर लाली फार्म्स स्वर्गवासी रजिंदर सिंह लाली जी दी पवित्र याद विच। इस पवित्र सेवा विच सहयोग देन लई असी लाली फार्म्स दे दिलों धन्नवादी हां।

गुरु रूप सत्संग जीओ कथे प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उंज ते शरीर दा हर अंग अपने आप दे कारामद है, महान है और उसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। हर अंग महान है लेकिन फिर भी किसी जगह पे पहुंचना है तो पहले रास्ता दिखाई दे दे। रास्ते का दिखाई देना बड़ा लाजमी है, फिर चलन वास्ते पैर भी होवन। विखाई देंदा है, चलन की तौफीक नहीं, रस्ता देखे होया व्यर्थ हो गया। लेकिन मैं अर्ज करा चलन की तौफीक है, रस्ता ते नहीं दिखाई देंदा। ऐसा मनुख ऐसा त्यास पीता जाता है, समा जरा ज्यादा लग जाएगा, भटकदया पहुंच जाएगा। रह गई गई गल हुण अंतरीव दुनिया दी, परमात्मा नूं जिहड़ा समझना है जानना है इते रस्ते दा वेखना है। इस तरह दे जानकार जानन वाले रस्ते नूं समझन वाले इन्हां दी तादाद बथेरी है, घट नहीं है। बड़े ज्ञानी ने इस्लामी दुनिया च भी जो कहते ने खुदा ला शरीक है ला मकान है, उदा कोई थां टिकाणा नहीं, उदा कोई शरीक नहीं, वो ला महदूद है, उदी कोई सीमा नहीं। इस तरह भारत विच बौद्धी क्या, जैनी क्या, सनातनी क्या, सारे ही कहते हैं बेअंत है, जात पात तो न्यारा है, रंग रूप तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, उदी कोई सीमा नहीं, बेअंत है, बेअंत है। सिख जगत देश भी करीबन करीबन ज्ञानी यही कुछ कहते हैं, बेअंत है, बेअंत है, लेकिन मनुख दा मन बेअंत तो प्रभावित नहीं। असीम है लेकिन मन उस असीम तो प्रभावित नहीं है। कारण सिर्फ रास्ता दिखाई देता है, मंजिल नहीं। जैसे किसी थान पे सी पहुंचना है कि किसी ने रास्ता दस देता या रास्ता दस रहा नाल है तो रास्ता तो दिखाई दे रहा है, जिथे असी पहुंचना है उते नहीं। जगत विच परमात्मा दे रस्ते दे भी बड़े झगड़े ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। वख वख मंत्रां दा रटन ये रस्ता है, राम जपना, अल्लाह हो जपना, ओम जपना, गोविंद जपना, वाहेगुरु जपना, सोहंग जपना, ओम जपना, ये सब मंत्र रस्ता ने, मार्ग ने। फिर मार्ग दे उते चलन दे अपने अपने ढंग ने, कोई दौड़दा है, कोई आस्ता चलदा है, कोई बहुत आस्ता चलदा है। तो चलन दे और रस्ते दे इतने झगड़े ने, इतने झगड़े ने, अक्सर मनुख रस्तियां च ही रह जाता है। क्योंकि गल रस्ते दी मंजिल दी ते है नहीं। कई दफा चल चल के मनुख जब थकदा है, टुटदा है ते पहुंचदा नहीं, रस्ते बदलदा भी है, ये भी महसूस करते हैं। क्योंकि मजहब बदलने दे बदलना, धर्म बदल लेना, शायद उत्थे कोई गल हो।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਰੀਬਨ 99% ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਦਾਤ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਤੇ ਦਾਤ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ 10,000 ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਗ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੁਹਰਾ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
कोई समा नहीं कटता, कोई संघर्ष नहीं करता। इस तरह 10,000 इकट्ठ दे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे एक जगह आसो होंगे, फिर 10,000 दे करीब जगह आसो होवन जो थोड़े जाग पे ने दाते तो प्रभावित ने, दात तो नहीं, दात ते है जो कुछ है, पता चल गया परिवार एक दात है, बच्चे एक दात ने, धन संपदा एक दात है, जीवन एक दात, सूरज दी रोशनी सानू दान दिच मिल रही है, वगदी हुई पवन दान है, बहुत कुछ जिस दासी कोई मुल नहीं चुकाया ते मिल जाता है, दाता वो दे रहे हैं। लेकिन 10,000 सत्संगियां विचों कोई एक कद दाते तो प्रभावित हो गया, एक उसनों जग्यासु कहते जाग पे है, मेरा सुता होया नहीं जाग पे है, मेरे एवें गुरुद्वारे नहीं आया कुछ समझ है, सिर्फ एवें बाणी नहीं पढ़ रहा कुछ समझ है, सिर्फ एवें ही नहीं जप कर रहा कुछ समझ है, सिर्फ एवें ही नहीं हाथ विच गुटका लई बैठा कुछ समझ है, उस जगह आसो। ये आंकड़े बहुत गहरे अनुभवी पुरुषां ने इकट्ठे किए ने, ते मैं थोड़े सामने जो उन्होंने मैं पढ़े थोड़ी जी समझ आई थोड़े सामने रख रहे हैं। 10,000 निवाजी किसी मस्जिद दे चोवन, 10,000 पूजा पाठ करने वाले किसी मंदिर दे चोवन, 10,000 दे करीब प्रेर करने वाले किसी चर्च दे च बैठे होवन, 10,000 गुरसिख सत्संगी किसी गुरुद्वारे च बैठे होवन, एक जगह सो होंदा, बहुते नहीं होंदे, एक होंदा जो जाग पे है, समझ आ गई मेरी दात लई, ओ हुण गुरुद्वारे नहीं आउंदा, दाते लई आउंदा, श्री दात वास्ते बाणी नहीं पढ़ता हुण दाते वास्ते पढ़ता, समझ आ गई। इस तरह 10,000 दे करीब अवन ते कोई एक जग्यासु होंदा, फिर गिनती कर दिन 10,000 जग्यासु होवन एक साधु होंदा है, एक साधु होंदा है। जैसे जैसे पहाड़ दे ऊपर चढ़िए ना तो जगह छोटी होंदी जा रही, थल्ले बहुत ज्यादा, जितने जग्यासु ने उतने साधु नहीं ने। 10,000 जग्यासु होवन उन्हां च कोई एक अद साधु आंदा है जो बड़ा तेजी नाल चल पाया, मेरा परमात्मा तो प्रभावित ही नहीं होया, परमात्मा की प्राप्ति लई पूरा समा कढ़दा है, पूरा संघर्ष करदा है, पूरी मेहनत करदा है, पूरा जप तप करदा है, मेरा प्रभावित ही नहीं होया, मेरी समझ ही नहीं आई। जिस दी समझ आई है उदी प्राप्ति लई यतन करन लग पे, मेहनत करन लग पे, बड़ी मेहनत करन लग पे, इनू साधु कहंदे। हुण होर सुन लो, 10,000 दे करीब साधु होवन, इन्हां च एक संत आउंदा जो पहुंच गया, एक इस तरह एक करोड़ां च कोई कद बनेगा। कोटन में नानक को नारायण जय जी, कोट मदे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी, करोड़ां च कोई एक। ऐसा क्यों है मैं दोहरावा, बड़ा बारीक मजमून है परमात्मा, और इस वास्ते बड़ी बारीक अकल चाहिए है। अकल मनुख कोल मोटी हो गई, हर वक्त संसार का चिंतन करिए, परिवार का चिंतन करिए, कारोबार का चिंतन करिए, ये सब आकार रखते हैं, मोटे हैं,
अकल मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है। निरंकार का चिंतन ही मनुख की अकल नूं बारीक करता है। साहिब ते कहिंदे ने जब साधना करन विच बैठे ते प्रभु कोले मंग मंगया कर, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। ए प्रभु, विवेकशील बुद्ध दे जो तेनू समझ सके, तेनू समझ सके। तो हुण मैं अर्ज करा, रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहीदियां ने, चलण वास्ते पैर चाहीदे ने। ज्ञान अख है, श्रद्धा भावना प्रेम प्यार ते पैर ने। प्यार दे सारे रूप ने, स्नेह प्रेम श्रद्धा भक्ति। प्यार एक रूप दे च नहीं है, इहदे कई रूप ने। संबंध प्यार नाल जुड़दा है, ज्ञान नाल नहीं। किसी की मैनू समझ भी आ जाए किसी मनुख की यह कौन है, संबंध ते नहीं जुड़दा, संबंध ते प्यार नाल जुड़दा। मैनू पता चल जाए फलाना, उहदे नाम धाम का भी पता चल जाए, उहदी शख्सियत का भी पता चल जाए, इहदे नाल कोई संबंध ते नहीं जुड़दा। संबंध प्रेम जोड़दा, प्रेम नेड़े लै जांदा है, ज्ञान नेड़े नहीं ले जाता। देखना तो दूरों भी हो सकता, दूरों असी चन्न नूं वेख लैंदे आ, देखण दा की है, सूरज नूं वेख लैंदे आ, ग्रह नक्षत्रां नूं वेख लैंदे आ, बड़ी दूर की चीज नूं वेख लैंदे आ। पहुंचण वास्ते तो कोई साधना करनी पएगी ना, उत्थे तक पहुंचण वास्ते तो कोई यतन करना पएगा ना। प्रेम ही नेड़े ले जाता किसी दे, ज्ञान नेड़े नहीं ले जाता। अगले की कितनी भी समझ पै जाए कि फलाना है फलाना है, उदी सारी जात पात नाम धाम कम सब कुछ का पता चल जाए, जानकारी मिल गई है, दूरी बनी रहती है, पता तो चल गया मनुख कौन है की है, लेकिन दूरी बनी हुई है क्योंकि प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार नेड़े ले जाता है, ज्ञानी उरार ही रह जाते हैं। इतनी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े ज्ञानी इस्लामी जगत दे, हिंदू जगत दे, सिख जगत दे, बड़ी सिर खपाई करते रह जाते हैं, यह भी मैं अर्ज करते हैं। ज्ञान की लोड़ है, वेख सके रस्ता, पर वेखण नाल सिर्फ पता चले, संबंध ते कोई नहीं जुड़े, रिश्ता ते नहीं जुड़े, वो ते प्यार नाल जुड़ता है। हुण प्यार दे कुछ रूप मन्ने गए ने, प्यार नूं स्नेह आख्या गया, प्यार नूं प्रेम आख्या गया, प्यार नूं श्रद्धा आख्या गया, प्यार नूं भक्ति आख्या गया। शिखर दा प्यार जो बुलंदियां नूं छूंदा है उसनूं भक्ति कहिंदे ने, निवाण दा प्यार जिसनूं स्नेह कहिंदे ने, इह स्नेह अपने तो छोटियां नाल हुंदा है, बच्चियां नाल हो सकदा। बिना स्नेह तो ते बच्चियां नाल भी संबंध नहीं जुड़ेगा। प्यार दी ए धारा निवाण दी तरफ जा रही है। स्नेह पशुआं दे च भी आउंदा है, कीड़े मकोड़ियां च भी आउंदा है, पंछियां च भी आउंदा है, बल्कि स्नेह किसी किसी पशु च मनुख नालों भी ज्यादा आउंदा है। जैसे बंदर ने, बंदरी दा बच्चा मर भी जाए मुर्दा बच्चे नूं भी सीने नाल लाई रखदी है, सुटदी नहीं, छोड़दी नहीं। ऐसा मैं आगरे विच, हरिद्वार विच, कानपुर विच देख के दंग रह गया, बनारस विच देख के दंग रह गया। है ते बच्चा मुर्दा, सुटदी नहीं पई, अद्धा गल गया, लीरा लीरा हो गया, नहीं सुटदी पई। बंदरी दे अंदर यह स्नेह बहुत बड़ा प्रबल है, मनुख नालों कई गुणा ज्यादा, मनुखी मां नालों कई गुणा ज्यादा। इसी स्नेह नूं मोह कह देंदे ने, घिरणा नहीं इस मोह नाल। धन गुरु अमरदास जी महाराज ते कहंदे ने,
ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੱਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਕਿਸਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸੀ? ਤੜਪ ਕੇ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸਨ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾਣਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਚਿੜੀ, ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਐਸਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸਨੇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾੜੀ ਅਲੇ, ਪੰਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤ ਸੋ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀ ਅਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਚਰਵਾਹਾ ਗਵਾਲਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਤੇ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਗਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੜੇ ਉੜੇ ਆਵੇ ਸਹਿਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਬਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਪੰਛੀ ਹੈ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਨਵੀਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੂੰਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਟੀਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਦਾ ਨੇ। ਉੜੇ ਉੜੇ ਆਵੇ ਸਹਿਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੇ ਛਰਿਆ, ਸੈਕੜੇ ਕੋ ਇੱਕ ਕੋ ਦੋ ਮੀਲ ਦਾ ਬਹੁ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੜੇ ਉੜੇ ਆਵੇ ਸਹਿਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ? ਮਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੂੰਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਆ ਕੂੰਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਤਨੀ ਤੋਫੀਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੂੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਲਦੀ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਵੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਵੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ ਜੈਸੇ ਬਛਰੇ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਕੂੰਜ ਜਦ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਚੁਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਗ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਤਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਦੇਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੈਸੇ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਧਿਆਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧੇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ,
ध्यान विच उमंग है, ध्यान विच प्यार है, इतना लीन होके मैं देख रहा तो कहने ध्याता मिट जाएगा, ध्यान मिट जाएगा, देह रह जाएगी, देह रह जाएगी। कूंज इतना ध्यान पूर्वक इतना स्मृति दे नाल दाने चुगदी है, वो भूल जाती है मैं चुग रही हूं, बच्चा चुग रहा है, बस इस नाल वो बच्चे पलदे ने। विज्ञान इस गल नूं ते तस्लीम करदा पिया कि विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, बड़े दूर तक पहुंचाए जा सकते हैं। एक मनुख किधरे बैठा है, बहुत दूर दे मनुख बारे कुछ विचार कर रहा है तो उन्होंने याद कर रहा है कि पहुंच जाती है, विचार पहुंचते हैं, ये सोचनी पहुंच जाती है, प्रभावित करती है। पंजाब दे कहने खैर होवे, सैयद फलाने की बड़ी याद आ रही है, लगता वह भी याद कर रहे हैं, वो तो कहते हैं इतने ऐसा कहते हैं। लेकिन किसी की जे बार बार याद आवे, हुण विज्ञान इस गल नूं तस्लीम करता है, अगला भी याद कर रहा है। सूफी ते इंज कहते हैं, वह दूजे ढंग नाल कहते हैं, वो कहते अज खुदा की बड़ी याद आ रही है, लगता है खुदा अज सानू याद कर रहा है। लेकिन भाई

परमात्मा चलेगा, गुरु चलेगा, तां ये फासला तय होवेगा, उंज हो ही नहीं सकता। दिल की गहराई चो एक दफा भी याद करना बड़ा औखा है। कलगीधर पातशाह कहिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, एक दफा की याद ही मिला दें, एक चित जाए एक छिन दे आयो, एक छिन एक सैकंड, काल फास के बीच ना, काल तो बच जाता है, अकाल नाल जुड़ जाता है, परमात्मा नाल जुड़ जाता है। याद तो एक दफा ही करना होता है, पर याद मनुख किसनू करेगा इतनी गहराई नाल जिस तो प्रभावित होगा। मां बच्चे तो प्रभावित है, ये सिमृति निवाण की तरफ चली जाती है, ये प्यार निवाण की तरफ चला जाता है, इन स्नेह कहते हैं, इनू मोह कहते हैं। मैं फिर अर्ज करा, गुरमत इस दी निंदा नहीं करती, मोह क्यों है? कुर्बान कीता तिसे विटों जिन मोह मीठा लाया। अगर मोह दे च मिठास ना होंदी, ना पशुआं दे बच्चे पलने सन, ना मनुखां दे, सारा संसार सुन्न हो जाना सी, कुछ भी नहीं होना सी। लेकिन सिर्फ मोह दे तल ते ही रह गए, अगे गया ही नहीं, ये मनुख पशुआं तो उच्चा नहीं उठ सकया। बस इन्नी गल है, इन्हें बुलंदियां नू नहीं छोया। स्नेह दे च एक छोटा होंदा है, एक वड्डा होंदा है, बच्चा हमेशा ही छोटा, मासूम है, कमजोर है, मजबूर है, स्नेह है उसका। स्नेह दे च देना ही देना होंदा है, समा देना है, मान है, अपने अस्त्रां दा दुध देना है, खून देना है, अपना अपना मास देना है, एक तरीके नाल अपनी शक्ति देनी है, समा देना है, वक्त देना है, बच्चे नू ते देना ही देना है, देना ही देना है। ये देन दी भावना स्नेह पैदा कर दी है, स्नेह ना होवे ते देन दी भावना नहीं पैदा होंदी। ये भी मैं अर्ज कर दें, स्नेह की अपनी एक सीमा भी आती है, अपने बच्चे नाल आता, स्नेह दूजे नाल नहीं आता। भाई गुरदास जी तो साफ कहते, पिता का प्यार ना पड़ोसी पे पाई है, साफ कह दिता है। ठीक है, पड़ोसी ने भी बच्चे ने चुक लिया, प्यार प्या करता है, पर प्यो वर्गा नहीं हो सकता, मां वर्गा नहीं हो सकता। भाई गुरदास ऐसा स्पष्ट कर देना, मोह स्नेह बड़ा सीमित होता है, और इस सीमित मोह करके हो सकता है अपने बच्चे दे औगुण भी चंगे लगन, पड़ोसी दे बच्चे दे गुण भी चंगे ना लगन, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस नाल स्नेह नहीं है। स्नेह दृष्टि नू बदल देता है, स्नेह करके अपने बच्चे च खूबियां ही खूबियां दिखाई देंदियां। चलो ये देते एक निक्का जिहा मैं तुहानू उदाहरण भी सरवण करा दें। अकबर की अदकड़ उम्र हो गई सी, ते घर विच औलाद नहीं सी। ये ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती की दरगाह ते भी गया, हजरत निजामुद्दीन दे चेले भी इसने कट्टे, होर भी पीरां फकीरां दियां मजारां ते गया। अखीर दे शायद जिहड़े इतिहास नूं पढ़दे ने सुणदे ने उन्हां नूं पता है, फिर धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दर्शन करन नंगे पैरी गोविंदवाल साहब दे। ख्वाहिश संतान दी, बच्चे दी, तखत दा वली वारस होवे कोई, हिंदुस्तान दा मैं बादशाह, मेरी औलाद कोई नहीं। धन गुरु अमरदास जी महाराज दे अस्थान गोविंदवाल साहब दे जद पहुंचे है, क्योंकि भीड़ भाड़ नाल सी, सिपाही नाल सन, लाओ लश्कर नाल सी, हिफाजत वास्ते, चौबदार ने धन गुरु अमरदास जी महाराज नूं दस दिता, मुगले आजम अकबर आए ने। सतगुरु कहन लगे, असी एक मर्यादा बनाई हुई है ऊंच नीच नूं खत्म करने वास्ते, वड्डे छोटे नूं खत्म करने वास्ते, पहले पंगत फिर संगत, साडे दर्शन बाद पहले पंगत।

धन गुरु नानक देव जी महाराज ने देख लिया सी, ए जो सारा दिन पानी पिलांदा है, सेवा करदा है, ते सेवक नहीं है, भगत नहीं है, ठग है। इहदी अखां दसणियां सज्जन ठग है, सिर्फ दिखाई देंदा सज्जन, सिर्फ नाम इसका सज्जन है, ते ठग है। इहदी अखां दसणियां पई, इहदियां नजरां दसणियां पई, की होया हथां नाल सेवा करदा पिया, अखां मैलियां, मेलियां नजरां नाल सेवा कर दे। मैं गुरुद्वारियां च भी देखे न, गुस्ताखी माफ, ओके ना, मेलियां अखां वाले। मैं मंदिरां विच भी सेवा कर दे देखे, अखां ते मेलियां ने, उन सेवादार ने, अखां ते मेलियां ने। इन्हां अखां नूं मनुख इतना संभाल के नहीं रखता कि मेलियां ना हो। हाथ भी धो लेंदा, पैर भी धो लेंदा, अखां भी साफ कर। इनियां मैलियां, इतनियां मैलियां, सियाणे कह देंदे ने इहदी अख मैली है, ठीक नहीं है। सतगुरु नानक देव जी महाराज इस नूं इंज कहिंदे ने, दृष्ट बिकारी बंधन बांधे हौं तां कहि बल जा। जिहड़ा अपनी अखां नूं धो लैंदा, निर्मल कर लैंदा, सब कुछ साफ दिखाई देंदा, मैं उस तों सदके जाना, कुर्बान जाना। गुरु नानक देव जी, मैं उस तो बलहार नहीं जाना, है लमकाई गहना। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, या इलाही चश्मे बीना ए विरे, ऐ मेरे इलाही वो अखां दे जिहड़ियां परमात्मा नूं देख सकदियां। फिर दूसरी पंक्ति ते कमाल कर देता है, या इलाही चश्मे बीना ए विरे, दर सरम अद इश्क सौदा ए विरे। इस सिर दे वो इश्क दे, वो शरदा दे, वो भावना दे कि सारे कह दें नंद लाल पागल है, पागल है, पागल है। ऐ मेरे गुरुदेव, अजे ते लोकी मैनू ज्ञानी कहंदे ने, विद्वान कहंदे ने, कवि कहंदे ने, शायर कहंदे ने, आलम फाजल कहंदे ने, मैनू अजे किसी ने पागल कहना शुरू नहीं किया। भगत पागलां जैसे दिखाई देंदे ने, ये भी मैं अर्ज करा आम बंदियां नूं, क्यों उन्हां दा रहन सहन तरजे जिंदगी जगत नाल तालमेल नहीं खांदी। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, ते जिन्हां दा जोड़ आ जांदा है, भगत कहण दी लोड़ भी की है, संत कहण दी लोड़ भी की है, फकीर कहण दी लोड़ भी की है। खास दृष्टि होवे ते पता चल जांदा इन्हां दी तरजे जिंदगी मेल नहीं खांदी। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, संसार विच रहिंदे होए संसारियां दी तरह दिखाई देंदे आया, संसारी नहीं आउंदे। एक गाथा है पंचदशी दे, एक बोध भिक्षु जो अठे पैर ध्यान साधना च रहिंदा सी, रस्ते सड़क च बैठा, आंदे जांदे जो लोकी उसनूं भिक्षा दे देंदे सन, उस नाल उसकी उपजीविका चलदी सी। वक्त दा राजा भी रोज रात ते बैठ के लंघदा सी, राज महलां तो राज सभा विच जांदा सी, उसे ही रस्ते तो। मन विच राजे दे ख्याल आया, भजनीक बड़ा है, लिवलीन रहिंदा है, हर वक्त सुरत दी एकाग्रता विच रहिंदा है, इन्हूं अपने महलां च बुला लें, दावत दे दें, कुछ दिन साढ़े महलां च रवे, दो चार दिन, अठ दस दिन। ये मन विच सोच लिया बई राज सभा तो वापसी ते आंदे हां, प्रार्थना करांगा, कहांगा वापस आ रहे। झुग्गी कोल इसने रथ रुकवाया, उतरे, हाथ जोड़ के आख्या, संत जी कुछ दिन साढ़े ग्रह दे च रहो, कुछ दिन। वो साधु एकदम खड़ा हो गया, कहने चलो। राजे की अद्धी शरदा टुट गई, कहते लै कि नाज नखरे कुछ किते ही नहीं, जिन्ने चिर तक बंदा नाज नखरे करे ना अगला उन्हों संत नहीं मनता। इस वास्ते बड़े बड़े नखरे दिखाते हैं वो लोग जो वास्तविक संत नहीं आते, गुस्ताखी में सरल नहीं आते, बड़े बिखम आते, बहुत बिखम आते, सरल नहीं आते, सादे नहीं आते।

0: ऐसी भले खाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: गुरबाणी विचार दी सेवा विच अपना योगदान पा रहे हन ब्लूबेरी दे उत्पादक अते प्रोसेसर लाली फार्म्स, स्वर्गवासी रजिंदर सिंह लाली जी दी पवित्र याद विच। इस पवित्र सेवा विच सहयोग देन लई असी लाली फार्म्स दे दिलों धन्नवादी हां।

0: ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਇੰਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ
1: ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ
2: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नू है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नू। कॉल 604-325-8370 604-325-8370
3: 1550 ते गुरबाणी विचार तुहाडे तक पहुंचाउण दी सेवा कर रहे हन फ्रेज़र व्यू सीडर माता नसीब कौर जी दी पवित्र याद विच। इस नेक सेवा लई असी फ्रेज़र व्यू सीडर दे दिलों धन्नवादी हां।
4: तुहाडा घर तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है।
5: इसनु खरीदन जा वेचन लई तुहानु चाहिदा है एक अजेहा रियल्टर जो तुहाडे लई काम करे, जिस ते तुसी भरोसा कर सको, जो तजर्बेकार होवे। अजेहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद, जो अपने 35 सालां तो वध्दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
4: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे। गुरदयाल सिंह बाद
5: तो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फार्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही अज ही गुरदयाल सिंह बाद
4: 604-351-5111 ते कॉल करो 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।